हे शब्द धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज शांति दे पुंज बाणी दे बोहित

चंद्रमा की शीतलता, चंदन की शीतलता, यह शीतलता सिर्फ शरीर नूं ही कुछ शांति या ठंडक पहुंचा सकती है, मन नूं आत्मा नूं ठंडक नहीं पहुंचा सकती। चंदन मस्तक ते लाउंदे ने इसे वास्ते कि मस्तक विच दिमाग हुंदा है और दिमाग विच अनेकां फतूर हुंदे ने। दिमाग विच फतूर होवे, दिमाग विच क्रोध उत्पन्न हो जाए, सारा शरीर क्रोधा अग्नि दे विच थर थर कंबन लगता है। मस्तक ते चंदन लाउण दा प्रतीक है शांति दा प्रदायक। लेकिन जे मन विच अग्नि होवे, क्रोध दी अग्नि, ते मस्तक ते चंदन लाया है, मन दी अग्न नहीं बुझेगी। ओ ते तां बुझेगी जे इसनू हरी नाम दा रंग चढ़ावेगा, परमेश्वर दे नाम दी इसनू शांति मिलेगी, ओदा चिंतन करके इस मन नू शीतलता प्राप्त होवेगी। जरा ध्यान देना, जालम ने एक ऐसा कांड रचया जो इतिहास विच इस तो पहला किधरे दृष्टि नहीं आउंदा। इस कलयुग दी ते क्या गल है, पिछले जड़े बीते हुए समय ने, युग ने, उन्हां विच भी ऐसी घटना किधरे सुनने विच नहीं आउंदी, पढ़ने विच नहीं आउंदी। पट्ठी तैयार कीती गई है, उत्ते लोहो रखी है, हुक्म दिता जालम ने एदे हेठां अग बालो, लकड़ां लिया कि अग बाली गई। उत्तों जेठ दी तपदी होई ए गर्मी दी रुत, ऐसे हाल विच आखिया गया गुरु अर्जन पातशाह जी नूं, आप इस तवी दे उत्ते बैठो, असां वेखना है कि तुहाडे अंदर कितनी क शीतलता है। तुसी जो कहंदे हो कि मैनू कोई तपा नहीं सकदा, कोई जला नहीं सकदा, असां वेखना है शीतलता कितनी है तुहाडे अंदर। धन गुरु अर्जन देव पातशाह मुस्कराए, सतनाम श्री वाहिगुरु बोल के आप तवी दे उत्ते चौंकड़ा ला लिया, चौंकड़ा ला लिया इस तवी दे उत्ते, और

वाहिगुरु की यही रजा है, मैनू परवान है। जिस हाल विच मेरा मालक खुश रहे, मैं ते ओही ओ कम करना है। जे उसकी रजा है तवी दे उत्ते मैं बैठा, अग दे उत्ते मैं बैठा, मैनू परवान है। हजूर ने चौंकड़ा ला लिया और चौंकड़ा लाण दी देर सी, चंदू ने हुक्म कीता जलाद नू, कोल ही एक कड़ाहे दे विच रेत गर्म कीती जा रही सी। जदों ओ रेत गर्म हो गई, हुक्म कीता चंदू ने जलाद नू, इस रेत दे कड़छे भर भर के गुरु अर्जन देव दे सिर विच पा दे, थल्यों भी अग है।

अंदर क्रोध भी अगन पड़क रही है। इन्हों दे अंदर नफरत द्वेष भावना दी अगन पड़क रही है, जो इन्हों नू मजबूर कर दी है कि ए जुलम करन। ए सोच रहे ने कि मैं भी इस तपस दा प्रभावित हो जावां, इस नाल मैनू भी कुछ प्रभाव पवे। पर मेरे गुरु ने, मेरे परमेश्वर ने जो मेरे अंदर एक नाम दा, जो सारियां शीतलतावां दा एक सोमा है, वो ऐसा अमृत नाम बख्शिश कीता है कि ए तपदे होए कड़ाहे, तपदे होए हिरदे उस नाम दी शीतलता नू प्राप्त करके शांत हो जांदे। पर ए शीतलता, नाम दी शीतलता उन्हां नू प्राप्त हुंदी है जिन्हां दे भाग चंगे होवन, जिन्हां दे श्रेष्ठ उत्तम भाग होवन। ते हरी नाम दी शीतलता उन्हां नू प्राप्त हुंदी है, वरना मनुख जबान तो ते जब जरूर जपदा उस परमेश्वर दा नाम, पर जे अंदर क्रोध दी अग्नि होवे तो जपे दा कोई फायदा नहीं। जे अंदर लोभ दी लालसा होवे, जे अंदर नफरत होवे, द्वेष भावना होवे, उस रसना तो जपे दा कोई फायदा नहीं। तो हजूर गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने सारे संसार नू एक शांति दा उपदेश दिता है। ए क्रोध दी अग्नि बुझ सकती है जे नाम दा शीतल अमृत ओ सरोवर ओ सोमा हृदय विच

सब कुछ अर्पण कर। पर मेरे पातशाह कहंदे ने उन्हां दे तन मन अर्पण करी जिन्हां ने अपना तन मन वाहिगुरु दे अर्पण कीते। फिर उन्हां ओ परचून दे मालिक नहीं हुंदे, ओ तां थोक दे वपारी हुंदे। थोक विच पदार्थ देंदे ने, लोकां नूं वंडदे हन, पर अपना सब कुछ वारिया हुंदा है वाहिगुरु तों।

ऐसे महापुरखां दे सिर्फ दर्शन ही कीतियां ओ पाप मुक जांदे हन खत्म हो जांदे नहीं।

0: जल बिन कुंभ न हो, ज्ञान का बतावन रहे गुरु बिन ज्ञान न हो, ओ गुरु बिन ज्ञान न हो।
1: बाबा जी थोड़ी इस छबील दे आसरे साडा पेंडा कटिया जांदा है।
2: आसरा उस दा आधार दा मैं देख सेवादार हाँ।
1: खुश रहो बाबा जी, खुश रहो।
2: आप उतर ले पी, ओ ले पी।
3: जल पाया परमेश्वर पाया,
2: अब मोहे जलत राम जल पाया, राम अधिक तन जलत बुझाया, मन मारण कारण बन जाइए, सो जल बिन भगवंत न पाइए।
4: सो जल बिन भगवंत न पाइए।
2: हाँ बेटी।
4: बाबा जी असि भी मन में जल लग रहे हैं, तुम्हारे को हजारों यात्री आते जाते, शायद तुम्हें कुछ पता हुए।
2: कादा पता?
4: ए मेरे पति ने इन्होंने सुपने विच एक थां वेखी सी, पानी दी एक छपड़ी है, ओदे कंडे ते बेरी दा दरख्त है, ते बेरी ते कां बैठदे ने।
2: छपड़िया ते कई ने ते बेरी दे दरख्त भी बेअंत हैं।
4: नहीं बाबा जी, आज बेरी ते इक्को ही होएगी, जिस तो कां उड़ के छपड़ी च डुबकी लैंदे ने ते चिट्टे हो उड़ जांदे ने।
2: चिट्टे हो उड़दे जांदे ने?
3: हां बाबा जी, ते नाल ही आवाज आ रही सी,
4: कागू हंस करे।
2: कागू हंस करे, कागू हंस कर, ये तो गुरु नानक देव जी की बाणी है। तुसी इंज करो, सिर्फ गोंदवाल चले जाओ, उत्थे गुरु अमरदास जी का दरबार है, गुरु नानक की अलाई बाणी का सोमा।
4: गुरु अमरदास?
2: हाँ बेटी, उन्होंने हर चीज का ज्ञान है, उन्होंने दर्शन करदे ही तुहाडे पैर अपने आप तुहानू उस मंजिल वल ले जाएंगे जिस मंजिल तुहाडे दिलां च तांगे।
4: किन्नी दूर है गोइंदवाल?
2: इथों थोड़ी दूर दरिया का पत्थर है, उत्थे बेड़ी पैंदी है, बस दरिया पार दे गोइंदवाल।
4: अच्छा बाबा जी असि चलने,
2: परमेश्वर भली करेगा। कबीर सेवा को दोए भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम।
0: उठ परी दायूज सार, सुबह नवाज गुजार, जो सिर साई नानी सो सिर कपल उतार, जो सिर साई नानी सो सिर की देखाए, उन्हें पैठ जलाए बालन संदे थाए, बालन संदे थाए।
5: और साहब जी की गल है पहला तुसी नहीं गया दिता?
4: असी असी किस तरह जानते, सोचते हैं पहले पूछ लिया होंदा।
5: की पूछना सी?
4: सारे मुसाफिरों ने तुहाडी सेवा च कुछ ना कुछ भेंट कीता है, पर असी सारे कोल ना दिल चौल ना धर्म ना तमड़ा।
5: और चलिए पहले, मैं कोई कम कमाइया नहीं करता, मैं तो गुरु के दर्शन आई हूं संगतां की सेवा करके अपना जन्म सफल कर रहा।
4: फिर भी तुहाडी लोड़ा?
5: मेरिया लोड़ा? मेरिया लोड़ा तो खुदावंद पूरिया करता है, तो हो भी चाहिए देखिए, जो कुछ मैं लोग दे जाते हैं जाके गुरु के दरबार चढ़ा देना, दिन वेले बेड़ी चढ़ाना, तो राती लंगर चो ढेड़ भर के बाहर थड़े दसो जाना। मैं उगन हारा कोगन पल्ले नहीं।
4: तन हो तुसी?
5: तन ते मैं नहीं पैना, तन तो गुरु महाराज है जरा सब नू अपनी मिठी बाणी का अमृत पिलांदा है, और दर ते जाओगे तो उन्हू कहना जिन्हें सानू ए सागर पार कराया, उस अवगन हारे नू इस पाव सागर तो पार उतारो।

जो भी सुने उसे दे जीवन नू उजला कर दे। जीवत जीवत जीवत रहो के ऐ गुरु दे प्यार वाले गुरु के लाल, राम दे नाम दी रसायण जो ए अमृत है।

देहरा मसीत सोई, पूजा हो निवाज होई। देहरा और मसीत, पूजा अते निवाज, इन्हां नूं एक ही समझो, क्योंकि जेड़े इन्हां विच फर्क समझदे ने उन्हां दे मनां विच ही नफरत रहिंदी। सदियां तों हिंदू मुसलमान इस मसले ते लड़दे झगड़दे आए, फर्क समझ के। कुछ लोग कहंदे ने कि सिख धर्म वक्खवादी है, पर सिख धर्म वक्खवादी नहीं, ये सिख धर्म का ही उपदेश है। धर्म दे नां ते लड़न वालेओ

पहरावे भी वख, देश भी वख, और इन्हां चीजां दा असर इंसान ते हुंदा है। पर सतगुरु जी कहंदे ने अगर आपां मन विच विचार करिए ते सानू किसे विच फर्क नजर नहीं आ।

मुसलमान अल्लाह नु याद करता है, हिंदू राम नु याद करता है। ते गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे ने अल्लाह दा नाम लेन वाले है, कुरान शरीफ पढ़न वाले है, मुसलमान नु ए उपदेश, हिंदू नु की उपदेश है? पुराण पढ़न वाले हिंदू है, राम नु याद करन वाले हिंदू, अपने मन विच ए विचार कर। एक बंदा मसीत विच बह के निवाज पढ़ता है, वो अपने अल्लाह नु याद करता है। एक ब्राह्मण मंदिर विच बह के पूजा करता है, वो अपने परमेश्वर नु याद करता है। टंग दोनों दे अलग ने, एक निवाज पढ़ता है, एक पूजा करता है, पर ये सोचिए है दोनों दा मकसद की है। मुसलमान अल्लाह नु याद कर रहे है, हिंदू अपने राम नु प्या याद करता है, मकसद दोनों दा परमेश्वर।

क्यों? कुछ लोग धर्मी अखवांदे हन पर धर्मी होंदे नहीं। धर्मी इंसान कदे किसी ते जुलम नहीं करदा। धर्मी इंसान किसी का निरादर नहीं करदा। भाई गुरदास जी अपनी वार विच बयान करदे हन कि ए देखो सच नूं छड़ के लोग किस तरह आपस विच लड़दे मरदे हन। भाई साहब जी बयान करदे ने चार वारन चार मजहबां

गंगा, बनारस हिंदुओं वास्ते पूजनीक ने, मक्का काबा मुसलमाना वास्ते। मक्का काबा मुसलमान पूजते ने, गंगा और बनारस हिंदू पूजते ने। अगे भाई साहब की कहते हैं।

सच किनारे रह गया, सच एक पासे रह गया। ब्राह्मण और मुलाने आपस च पै लड़दे मरदे ने। भाई साहब जी कह रहे ने, अगर इंसान सच नू ना छड़े, सच पल्ले रखे, ते कदी भी झगड़ा नहीं होंदा।

इस पौड़ी दे विच भाई गुरदास जी ने इस्लाम धर्म दा जो असूल है उहदे बारे दस्या कि मुसलमान वास्ते रोजे ईद निवाज जरूरी इन्हां दे पीर पैगंबरां दा इह उपदेश। पर जिस वेले मुगलां दा राज होया हिंदुस्तान ते तां औरंगजेब जिहड़ा कि इक जालम बादशाह सी उसने यह हुक्म कीता सी कि हिंदुस्तान विच हिंदू धर्म नहीं रहन देना। तां पंडित कृपा राम ने आनंदपुर साहब आके गुरु तेग बहादुर साहब दे दरबार पुकार कीती, साडे हिंदू धर्म की रक्षा करो। ता गुरु तेग बहादुर साहब ने अपना सिर दे के हिंदू धर्म की रक्षा कीती। और गुरु नानक साहब दे अवतार तो पहला भी ठाकुर द्वारे ढाए जाते रहे भाई गुरुदास।

वड़े वड़े राजे, वड़े वड़े नवाब, वजीर, इन्हां ने अपना की काम बना लिया। राजभाग मिल गया, लोकां नूं आपस विच लड़ाना, और जद भी पता लगना किधरे सोहनी औरत है, उस नूं हथियाण वास्ते हजारां बंदियां नूं लड़ाई दे मैदान विच मरवा देना। राजियां दा, वजीरां दा, नवाबां दा ये काम रह गया, औरतां वास्ते लड़ाई झगड़े, हजारां लोकां दा

एक पासे आपा कह नया मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ए रब दा वाहेगुरु दा राम दा घर है भगवान दा घर है पर इंसान अज दा कहो जिहा हो गया है एक पासे कहंदा है ओ रब दा घर है जद झगड़े आपस दे हो ते फिर इंसान जिहड़ा है ओ इस पासे तुर पैंदा है के धार्मिक स्थान भी साड़न तो ओ गुरेज नहीं करदा जिहड़े लोग धार्मिक स्थानां दा अपमान करदे हन कि ओ अपने धर्म दे नाल इंसाफ करदे हन कि ओ जिस रब दे नाल प्यार करदे हन अपने मन कोलो पुछन कि मेरे इस काम ते मेरा रब मेरा परमेश्वर खुश हो रहे हैं अपने मन दे नाल विचार करो ते इसका जवाब खुद मिल जाएगा।

मोम वर्गा होना चाहिए, जिस तरह मोम पिघलती है और रोशनी देती है, इसे तरह ए मुसलमान तू भी किसी ने दुखी देखे ते तेरा मन भी मोम दी तरह पिघल जावे। आप भावे दुखी हो पर दूसरे नु सुख दे। मुसलमान मोम दिल होवे, अंतर की मल दिल ते धोवे, और दूसरे पासे ब्राह्मण नु उपदेश कीता, कहे कबीर जो ब्रह्म विचार सो ब्राह्मण कैयत है हमारे। जिड़ा ब्रह्म दी विचार करे, जिड़ा ब्रह्म नाल जुड़िया रवे, असी ते ओनु ब्राह्मण कहने हैं, क्योंकि जिड़ा ब्रह्म नाल जुड़ गया वो फिर जिधर भी जिस पासे भी देखेगा, वो जिधर भी देखेगा ओनु ब्रह्म ही नजर आवेगा। जे हर पासे ब्रह्म है, हर पासे परमेश्वर है, ते फिर किदे नाल झगड़ा ते किदे नाल लड़ाई, किदे झगड़े खत्म हो जाएंगे। और गुरु घर दा उपदेश है, फिर ते इंसान ही तो वेगा, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनाई। कोई बेगाना नहीं, कोई पराया नहीं, किदे नाल लड़ा।

गुरु साहबाने धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जितनिया भी लड़ाइया लड़िया वो किसी फिरके के खिलाफ नहीं, वो जुल्म के खिलाफ लड़ाई सी। जुल्म करने वाले का कोई धर्म नहीं आता। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का इतिहास पढ़ के देखो, उन्हां दे नाल हिंदू और मुसलमान पठान तक साथ दे के जुल्मिया दे नाल लड़िया करदे सन। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की फौज में हिंदू भी सन, मुसलमान और पठान भी सन, जिन्हां ने समझिया कि यह इंसानियत के भले वास्ते लड़दे ने। हथियार दो बंदे चुकते हैं, एक जुल्म करन वाला और एक जुल्म नू रोकण वाला। जिहड़ा जुल्म करदा है उहनू फिटकारा पैंदियां ने, ते जिहड़ा धर्म की रखिया वास्ते हथियार चुके, लोकां दे भले वास्ते हथियार चुके, जुल्म दे टाकरे वास्ते हथियार चुके, दुनिया हमेशा उहनां दी पूजा करदी है। तो आओ भाई आपां भी महापुरशां दे राह ते चलीए और ये जिहड़ा उपदेश है इसनू अपने दिल विच थां लईए, उपदेश ते चलण दी कोशिश करिए। गुरु साहिबां दा उपदेश अणख नाल जीवना, धर्म दी किरत करनी, नाम जपना और वंड छकना, जिहड़ा इन्हां गल्लां नू मन लवेगा ओहदा जीवन

गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने बख्शिश की थी, जिथे सारिया भगतों नू सन्माने है उथे नामदेव जी का भी आदर किया। नामदेव जी पवित्र बाणी द्वारा मालिक दे चरणा च अरदास करते ने, कहते हे प्रभु ये संसार एक समुंदर है, ये समुंदर विच कहते जदों देवत्या ने समुंदर नू रिड़किया ते 14 रतन कढ़े, समुंदर विच बहुत कीमती नायाब तोहफे ने, पर समुंदर विच बड़े बड़े भयानक जानवर भी बैठे हुए ने। सतगुरु कहंदे ने एक समुंदर तां ओह है जिहदे विच पाणी दा कोई अथाह नहीं, ते एक समुंदर ए संसार है। नामदेव जी महाराज इस संसार समुंदर दी बात करदे ने, कहंदे ने हे मालक

मैं अनजान हाँ, मैनू तैरना नहीं आउंदा। तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तू देव

मैं तेरे तो बलिहारी जावा, मैनू भगती दी दात दे, जिदे करके ए मेरे जीवन दी बेड़ी संसार समुंदर तो पार लंघ सके।

भाई साहब ने अगली गल बड़ी कमाल दी कही है। कहंदे ने हार चले जेड़े भगतां नाल ईरखा करदे ने, भगतां नाल द्वैत करदे ने। भाई साहब कहंदे ने

0: देख दे
1: फट गए ने कागज तुसा दे
0: लेख दे
1: हार गए तुसानू समझौ दे कल दे देखांगे तसीरे तुसी किवें नहीं चल दे आप दिया पंडा ने जलाद बन दे

इस संसार ते कोई प्राणी एक दूसरे दा कोई एक काज सवार सकदा है, कोई दो, कोई तीन, कोई दस, कोई सौ, मगर सारे कार्य सवारन वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी ओट लवा जो समर्थ है, जो मेरे

भगत रविदास जी अपने शब्द विच फरमान करते हैं कि निंदा करन वाला मनुख कितने भी चंगे कर्म कर लवे उदे कर्म कीते हुए सारे निष्फल चले जाते हैं। जिमें कि 68 तीर्थां दा इशनान, परोपकारी जीवन बतीत करना, बहुत सारा दान पुन करना, बहुत प्रसाद करावे, पाठ करावे, पर जे निंदा हो गई ओ भी किसी महापुरख दी, ते कोई भी कीता होया कर्म फली भूत नहीं हुंदा। जेड़ा मनुख इस भयंकर रोग विच फसे है।

जिथे भी कोई रब तो भुलिया इंसान, गुरु नानक बाबा नू नजर आया, सतगुरु उथे आप पुजे। संसार दी रीति है भई महापुरश वली पीर पैगंबर उन्हां कोल दुनिया जांदी है, पर गुरु नानक सच्चा पातशाह आप लोगां कोल जांदे रहन। बाबा काशी गए, बनारस गए, हरिद्वार गए, गया जी गए। क्यों गए? भई लोगां दा तीर्थां ते इकट्ठ हुंदा सी ते बाबा जी उत्थे अपने विचार सुणांदे सन, लोगां नूं सीधे मार्ग ते लांदे सन। बटाले दे लागे बिल्कुल नजदीक, क्योंकि बटाले विच गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे सौरा परिवार सी, ते लागे अचल बटाला है। उह सिद्धां दा बहुत वड्डा गढ़, शिवरात्रि दा मेला लगा होया सी, ते गुरु नानक ने सुनहरी मौका तकिया, कहण लगे मरदाने आ चल। गरीब नवाज पातशाह सत बचन, पाई साहब भाई गुरदास

लगी बरसन लक्ष्मी। बाबे दा आना सुन के सारे लोग उधर नू आ गए जिधर गरीब नू आज पाछा बैठ।

बंदे नूं अपनी हार हुंदी दिस पवे ना, ए आम बात है, फिर वह झगड़े ते उतर आउंदा है, और तां पेश जांदी कोई नहीं। जोगियां ने गुरु नानक बाबा नाल बहस करनी शुरू कर दित्ती। भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे ने, कैसी बात सुनना, जरा प्यार नाल सुनना। कहंदे ने

ये सन वो जा करके अनाज ले आंदा, लिया करके आप पकाया ते पका करके सारे साधुआं नू भोजन छकाया, पानी पिलाया ते उन्हां नू तृप्त कीता।

राजा ही नहीं कोई रंक भी सेवा कर सकता है। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने एक मटका लिया, एक मग लिया, ते आंदे जांदे राहियां नूं पानी पिलाना शुरू कर दिता। भाई जिथे पानी पिलाया गुरु नानक सच्चे पातशाह ने, अज उथे गुरु नानक प्याओ दा गुरुद्वारा बनिया होया है। संगतां जांदियां हन, प्यासियां जांदियां हन, तृप्त होके आउंदियां हन, मन दियां आशावां लेके जांदियां हन, मनोकामना पूरियां करवा के आउंदियां हन। बाबा नानक जी दी इस प्रेरणा नूं ले करके, इस सेवा नूं सामने रखदे होए भाई साहिब भाई गुरुदास जी सारिआं नूं उप

दास जी ने चात मारी गुरु रामदास सच्चे पातशाह दे जीवन विच ते जीवन विच चात मार के देखिया के गुरु रामदास सच्चे पातशाह दी महान सेवा की हुई।

देह रा मसीत सोई, पूजा ओ निवाज होई। देहरा और मसीह पूजा अते निवाज इना नु एक ही समझो, क्योंकि जेड़े इना विच फर्क समझदे ने उन्ना दे मना विच ही नफरत रहिंदी। सदियां तो हिंदू मुसलमान इस मसले ते लड़दे झगड़दे आए, फर्क समझ के। कुछ लोग कहंदे ने कि सिख धर्म वक्खवादी है, पर सिख धर्म वक्खवादी नहीं, ए सिख धर्म दा ही उपदेश है। धर्म दे नां ते लड़न वालेओ सुनो, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तुहानू की उपदेश करदे ने। ना मंद

नाम वख हैं, पहरावे भी वख, देश भी वख, और इन चीजों का असर इंसान ते हुंदा है। पर सतगुरु जी कहंदे ने अगर आपां मन विच विचार करिए ते सानू किसे विच फर्क नजर नहीं आ

महाराज उपदेश कर रहे हैं। आपस में लड़न वाले हो नस्लां दे धर्म दे झगड़े वधाण वाले हो। अपने मन में एक गल सोचो, एक नैन एक कान, सारियां कोल इको वर्गियां अखां ने, इको वर्गा नक है, इको वर्गा शरीर है, सारियां कोल अखां ने, सारियां कोल कान, सारियां कोल शरीर, सारियां कोल बोली। खाक कहंदे ने मिट्टी, आतिश कहंदे ने अग, आप कहंदे ने पानी। परमेश्वर ने पांच तत् मिला के पंजा तत्ता दा ए शरीर बनाया। साहब जी कहंदे ने चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, संसार विच जितने भी इंसान हन सारे पांच तत्ता तो बने हन। ते फेर भाई फर्क की है, फिर ये झगड़े क्यों नहीं?

अज दे नहीं सदियां तो चले आ रहे हैं। क्यों कुछ लोग धर्मी अखवांदे हैं पर धर्मी होंदे नहीं। धर्मी इंसान कदे किसी ते जुलम नहीं करता। धर्मी इंसान किसी का निरादर नहीं करता। भाई गुरदास जी अपनी वार विच बयान करते हैं कि ए देखो सच नूं छड़ के लोग किस तरह आपस विच लड़दे मरदे हैं। भाई साहब जी बयान करते हैं चार वारन चार मजहबां

और मुसलमान दो वटियां कौमा और दो नादाई झगड़ा सदियां तो चलिया आ रहा है, पर गुरु नानक दे घर दा उपदेश की है कि जेड़े लोग रब दे नां ते लड़दे हन ओ पुल्ले और पटके हुए लोग हन। भाई साहब जी बयान कर दे, चार वारन चार मजहबां

मन विच बखीली होवे, नफरत होवे, ते फिर मन विच प्यार नहीं हुंदा। ते साहिब जी बाणी द्वारा भी यही समझांदे ने कि मना विचों जे नफरत

गंगा, बनारस हिंदुओं वास्ते पूजनीक ने, मक्का काबा मुसलमाना वास्ते, मक्का काबा मुसलमान पूजते ने, गंगा और बनारस हिंदू पूजते ने, अगे भाई सब की कहते हैं।

और कतेबा नू भुला दिता। वेद की पूजा हिंदू करता है, कतेब नू मुसलमान पूजता है। भाई साहब जी कह रहे ने वेदा और कतेबा का उपदेश भुला दिता है और दुनिया जिहड़ी है देखो लालच विच फस के शैताना दे राह ते चल पई है। शैताना दा राह नफरत ईरखा दुबदा

सच किनारे रह गया, सच एक पासे रह गया। ब्राह्मण और मुलाने आपस च पै लड़दे मरदे ने। भाई साहब जी कह रहे ने, अगर इंसान सच नू ना छड़े, सच पल्ले रखे, ते कदी भी झगड़ा नहीं होंदा।

अल्लाह दे राम दे नाम नु समझिया नहीं, झगड़े पाले और जिहड़ा यह जन्म मिले है झगड़िया में गवा लिया, और आवा गाउण दा चक्कर जिहड़ा है ये उस तरह

ईद निवाज और भाई साहब जी कह रहे ने मुसलमाना विच रोजे ईद निवाज ए जरूरी कर दिते और संसार दे विच जेड़े मुसलमान हैं ओ इन्हां दे

इस पौड़ी दे विच भाई गुरदास जी ने इस्लाम धर्म का जो असूल है उसके बारे दसिया कि मुसलमान वास्ते रोजे ईद निवाज जरूरी इन्हां दे पीर पैगंबरां दा यह उपदेश। पर जिस वेले मुगलां दा राज होया हिंदुस्तान ते तां औरंगजेब जिहड़ा कि एक जालम बादशाह सी उसने यह हुक्म कीता सी कि हिंदुस्तान विच हिंदू धर्म नहीं रहन देना। तां पंडित कृपा राम ने आनंदपुर साहब आके गुरु तेग बहादुर साहब दे दरबार पुकार की थी। साडे हिंदू धर्म की रक्षा करो। ता गुरु तेग बहादुर साहब ने अपना सिर दे के हिंदू धर्म की रक्षा की थी। और गुरु नानक साहब दे अवतार तो पहला भी ठाकुर द्वारे टाए जाते रहे भाई गुरु

और जिन्हां ने इंसाफ करना है, जिन्हां ने प्रजा का भला करना है, उन्हां दा हाल की? काफर, मुलहद, इरमनी, रूमी जंगी दुश्मन दारा दारा कहंदे ने औरत नूं। वड्डे वड्डे राजे, वड्डे वड्डे नवाब, वजीर, इन्हां ने अपना की काम बना लिया? राज भाग मिल गया, लोकां नूं आपस विच लड़ाना, और जद भी पता लगना किधरे सोहनी औरत है, उस नूं हथियाण वास्ते हजारां बंदियां नूं लड़ाई दे मैदान विच मरवा देना। राजियां दा, वजीरां दा, नवाबां दा इह काम रह गया, औरतां वास्ते लड़ाई झगड़े, हजारां लोकां दा खून वहा।

ते फिर कहना कि मैं धर्मी हो गया। नहीं, भाई साहब जी कह रहे ने कि देखो इन्हां राजियां महाराजियां दा वजीरां दा की काम बन गया, अपने फायदे वास्ते ये धर्म तो दूर हो गए और लोकां दा नाश करन लग पे।

जाओ निवाजू की ए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे रब दा घर हन इन्हां दा अपमान करना ठीक नहीं क्योंकि एक पासे आपां कहने आ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ए रब दा वाहेगुरु दा राम दा घर है भगवान दा घर है पर इंसान अज दा कहो जिहा हो गया है एक पासे कहंदा है ओ रब दा घर है जद झगड़े आपस दे हो ते फिर इंसान जिहड़ा है ओ इस पासे तुर पैंदा है कि धार्मिक स्थान भी साड़न तों ओ गुरेज नहीं करदा जिहड़े लोग धार्मिक स्थानां दा अपमान करदे हन कि ओ अपने धर्म दे नाल इंसाफ करदे हन कि ओ जिस रब दे नाल प्यार करदे हन अपने मन कोलो पुछन कि मेरे इस काम ते मेरा रब मेरा परमेश्वर खुश हो रहे है अपने मन दे नाल विचार करो ते इसका जवाब खुद मिल जाए।

सहार नहीं सकता जेड़ा सच तो दूर है। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का एहो ही उपदेश है जेड़ा आप जी सरवण कर रहे हो। ऐसा उपदेश क्योंकि यह एक हकीकत है। मुसलमान कहता रहा हिंदू काफर है, काफर और हिंदू कहता रहा मुसलमान मलेश है, पर गुरु साहब जी कहते ने माड़ा वो है जिदे कर्म माड़े, नीच वो है जिदे काम नीचा वाले। और गुरु घर दे विच एक उपदेश है कि हिंदू और मुसलमान कहो जिहा होना चाहिए। पहला धन गुरु नानक साहब जी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी विच उपदेश करते हैं कि मुसलमान नाम बड़ा पवित्र है, बड़ा पाक है, पर मुसलमान कहो जिहा होना चाहिए।

मोम वर्गा होना चाहिए, जिस तरह मोम पिघलती है और रोशनी देती है, इसे तरह ए मुसलमान तू भी किसे न दुखी देखे ते तेरा मन भी मोम दी तरह पिघल जावे। आप भावे दुखी हो पर दूसरे नु सुख दे।

और दूसरे पास से ब्राह्मण ने उपदेश किया, कहे कबीर जो ब्रह्म विचार सो ब्राह्मण कैयत है हमारे, जिड़ा ब्रह्म दी विचार करे, जिड़ा ब्रह्म नाल जुड़िया रवे असी ते ओनू ब्राह्मण कहने हैं, क्योंकि जिड़ा ब्रह्म नाल जुड़ गया वह फिर जिधर भी जिस पासे भी देखेगा वह जिधर भी देखेगा ओनू ब्रह्म ही नजर आवेगा। जे हर पासे ब्रह्म है हर पासे परमेश्वर है ते फिर किहदे नाल झगड़ा ते किहदे नाल लड़ाई, किहदे झगड़े खत्म हो जाणगे। और गुरु घर दा उपदेश है फिर ते इंसान इहो ही कहेगा, ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बनाई। कोई बेगाना नहीं, कोई पराया नहीं, किहदे नाल लड़ा सारे ते

साहब कहने लगे, बाबा आखे हाजी है भाई सुनो, शुभ अमला बाजो दोनों रोई, जे अमल चंगे नहीं पावे वो हिंदू है पावे वो मुसलमान है उन्हां नूं रोना ही पवेगा, क्योंकि जेड़ा परमेश्वर है ओदी निगाह विच नाम दे नाल कोई नहीं पूजिया जांदा, उत्थे ते जिहदे अमल चंगे ने उन्हूं ही आदर मिलेगा। बाबा आखे हाजिया शुभ अमला बाजो दोनों रोई, हिंदू मुसलमान दोई दरगे अंदर लहन ना टोई, काम करी जाइए माड़े ते माड़े काम करके आखिए दरगाह सानू जगह मिल जाएगी। साहब जी कहन लगे ने, हिंदू मुसलमान दोए अगर चंगे काम नहीं ते दरगाह विच कोई नहीं मिलेगी, अगर काम चंगे ने चाहे वह मुसलमान है चाहे वह हिंदू है दरगाह दे विच उन्हां नूं आदर मिलेगा, जे काम चंगे नहीं ते फिर आदर नहीं।

गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का प्रकाश होया है। उस वेले का जिक्र है, एक मुसलमान फकीर पेखन शाह पटना साहब दर्शन वास्ते आया।

गुरु गोविंद सिंह जी महाराज छोटी उम्र है पिखन शाह पटना साहब जद पहुंचे है, उसने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन किए छोटी उम्र विच। पर मन विच एक सोच पूरी कि ए रबी नूर हिंदू मुसलमान विचों किस दा पक पूरदा है। इस मंतव लई उन्होंने दो मठियाई दियां कुजियां ते दो कुजियां विच एक विच दुध एक विच पानी लिया। मठियाई दियां कुजियां तो भाव उन्हां दा धर्म सी ते पानी वाले कुजे दा अर्थ उन्हां मुसलमान भरिया सी ते दुध वाले नूं हिंदू मिथिया सी। मुसलमान बंदश ते शरा नूं ही धर्म समझदा है अते पानी बंदश विच पै के ही काम सवारदा है। हिंदू चिट्टे कर्मा ते जोर देंदा है अते चिट्टियाई दा चिन्ह दुध ही है। पटना पुज के उन्हां ने पहला दोवें मठियाई दियां कुजियां बालक गुरु अगे रखियां। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने दोवें छोटे छोटे कोमल हाथ दोनों कुजियां ते रख दिते। फिर जद पिखन शाह ने पानी ते दुध दे भरे हुए कुजे अगे कीते ता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने छोटे छोटे चरणा दे नाल दोवें ही कुजे डोल दिते। सारे हैरान हो गए पर पिखन शाह ने अगे वध के गुरु साहिबां दे चरण चुम ले और पिखन शाह ने फिर यह सारा भेद लोगों सामने खोलिया कि यह गुरु किस एक दा नहीं। यह धर्म तो कुजियां विचों कढ़न आया है। धर्म की यह बदकिस्मती है कि उसनों किसी ने मसीत ते मंदिर तो बाहर नहीं कढ़िया। इस कलगी वाले ने हिंदू धर्म मुसलमान धर्म नालों सिर्फ धर्म ते चलन की प्रेरणा दी। सारी जिंदगी ही उन्हां दी मुहारनी यही रही। वो पहले विश्व आगू सन जिन्हां मंदिर ते मसीत पूजा ते निवाज नूं इक करके जानन दा उपदेश दिता। अकाल उस्तत विच ही गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा ए प्रसिद्ध सवैया है जिहड़ा आप जी सरवण कर रहे हो। देहो राम मसीत सोई पूजा हो निवाज हो ही। ए ठीक है कि सिख धर्म विच मूर्ति पूजा नहीं कीती जांदी और ना ही निवाज पढ़ी जांदी है। पर फिर भी देखो आम होंदा है दो लड़दे होन ते तीसरा बंदा तमाशा देखदा है। पर गुरु नानक दा घर उपदेश देंदा है कि भाई क्यों रब दे नां ते लड़दे हो। ठंडे जिगरे दे नाल ठंडे मन दे नाल विचार करो कि फर्क की है। एक ने पूजा करनी है एक ने निवाज पढ़नी है एक ने वाहिगुरु कहना है ते फिर फर्क की है। ना वक्रे हन राह एक है मंजिल एक है फिर झगड़ा क्यों।

गुरु साहबान धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जितनिया भी लड़ाइया लड़िया वो किसी फिरके के खिलाफ नहीं, वो जुल्म के खिलाफ लड़ाई सी। ते जुल्म करने वाले का कोई धर्म नहीं होता। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का इतिहास पढ़ के देखो, उन्हां दे नाल हिंदू और मुसलमान पठान तक साथ दे के जुल्मिया दे नाल लड़िया करदे सन। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की फौज विच हिंदू भी सन, मुसलमान और पठान भी सन, जिन्हां ने समझिया कि ये इंसानियत के भले वास्ते लड़दे ने। हथियार दो बंदे चुकते हैं, एक जुल्म करन वाला और एक जुल्म नू रोकण वाला। जिहड़ा जुल्म करदा है उहनू फिटकारां पैंदियां ने, ते जिहड़ा धर्म की रखिया वास्ते हथियार चुके, लोकां दे भले वास्ते हथियार चुके, जुल्म दे टाकरे वास्ते हथियार चुके, दुनिया हमेशा उहनां दी पूजा करदी है। तो आओ भाई आपां भी महापुरुषां दे राह ते चलीए और यह जिहड़ा उपदेश है इसनूं अपने दिल विच थां लईए, उपदेश ते चलण दी कोशिश करिए। गुरु साहिबां दा उपदेश अणख नाल जीवना, धर्म दी किरत करनी, नाम जपना और वंड छकना, जिहड़ा इन्हां गल्लां नूं मन लवेगा।

मेरे मन विच तांग होवे के मैं जाके तेरे दर्शन करा। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दी जिन्हां ने 12 साल सेवा की थी। 72 साल दी उम्र विच बाबा अमरदास जी जदों गुरु अंगद देव पातशाह दे कोल आए ते जदों दर्शन कीता ते मन मन गया। आ मन जिथे मन्ना होंदे ना ओ उथे इक नजर ते ही मन जांदे, पहली नजर ते ही मन जांदे। जदों बाबा अमरदास जी ने गुरु अंगद देव जी दे दर्शन कीते आख्या मैं गुरु दी पाल कर रहा सां ते अज मैनू गुरु प्राप्त हो गए। उस दिन तो बाद बाबा अमरदास जी अपने घर नहीं गए, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दी सेवा विच लग गए। रोज गागर दी सेवा करनी, खंडूर साहब तो गागर लैनी, 5 मील तुरदे हुए ब्यासा।

खुंजाया जो सेवा तो बिना चला गया। आज 12 साल का आखिरी दिन है, आज एडा चखड़ चल रहा है, एडा मीह पै रहा है कि रस्ता नजर नहीं आउंदा। आप पुठी प्यारी तुरदे हुए अद्धे रस्ते पहुंचे, जिथे आप अद रस्ते विच आराम करते सन।

चुक चुक जा रहे सात सगत बोलो श्री, क्योंकि जितना आ फल लगता है टैणी नू, ओ टैणी उतनी चुक।

की जुगत गुरु के पुत्र हो गए ते गुरु के पुत्र सत्संगी जिथे मिलके बैठ के प्रभु जस करते ने जेड़ा आके उन्हें सत्संगियां च रल गया गुरु पुत्रां च रल गया प्यार दे रंग च रस्ता होया प्रभु जस कर रहे हैं प्रभु जस मान रहे हैं और यह धर्म का मार्ग धरती दे धरन वाले निरंकार प्रभु ने गुरु दे रूप च आप धारण किया आप बनाया इस मार्ग ते जेड़े चलते ने धर्म पंथ धरियो धरनी तर आप जेड़े इस मार्ग ते चलते ने रहे लिव तार ना तावत है भटकना मुक जाती है लिव जुड़ जाती है जीवन का आनंद लेंदे ने भगत भट्ट मथुरा जी कहंदे ने कहंदे ने वड्डे भागां वाले ने लोग मथुरा पन भाग भले उनके मन इच्छित ही फल पावत है उन्हां दे मन दी इच्छा प्रभु प्यार नूं प्राप्त करना और ये फल प्राप्त कर दे ते कहंदे ने उन्हां नूं फिर रब दे सुत सूरज दे पुत्र धर्मराज दा डर नहीं रहिंदा रब के सुत को तिन त्रास कहां जो चरण गुरु चित लावत है जेड़े गुरु चरणा नाल मन जोड़ लेंदे ने उन्हां नूं नरक दा डर नहीं जम दा डर नहीं ते ना ही किसे सुरग दी इच्छा रह जांदी गुरु चरणा दे प्यार च गड़ूंद होए आनंद लेंदे ने रंग च रते होए

0: सब इस तुक नु गायन करो और सिंह। दिस इज द शब्द ऑफ धन गुरु रामदास साहेब, सोठ महला
1: चौथा
0: चौथा। सब मिलके करो कीर्तन।

क्रोध नाल प्यार कर दे। हजूर फरमांदे झूठ बोलना मुर्दार खाना चंगा लगदे, किसे नाल त्रोह करना ए इनू मिठे लगदे ने। हजूर कहंदे ने ऐ वाहगुरु इन्हां नू रख लै इन्हां औगणा तों।

रोज अरदास करदा सी, ऐ परमात्मा आओ मेरे हिरदे दे थड़े ते बैठो। बेनतियां करदा रहा। एक दिन परमात्मा ने बेनती सुन ली, आ गए, कहन लगे खोल भाई बुआ तेरे हिरदे दे थड़े ते बैठी है। जां बुआ खोलिया, इस हिरदे दे सिंघासन ते बहुत भीड़ कठी हुई हुई, किधरे ईरखा बैठी है, किधरे क्रोध बैठे, किधरे होमे, किधरे लोभ, सारा थड़ा भरिया होया। परमात्मा ने पूछा बिठाएगा किथे, थड़ा तो तेरा खाली नहीं, एक वस्तु नू कढ़ेगा तां दूजी नू पाएगा, मैनू बिठाण लई किथे है थां, थड़ा ते सारा भर के रखिया होया। कह लगा लै इह तां गल भुली गई सी। आया क्रोध दी बां फड़ी बाहर छड़ आया, फिर आके काम नू बाहों फड़िया, गलों फड़ के बाहर छड़ आया। जा मुड़ वेख दे क्रोध उथे ही बैठे, मोह दी बां फड़ दे बाहर छड़ आउंदे, फिर अहंकार नू बाहर छड़न आउंदे, फिर वेख दे मोह उथे ही खड़े। ए विचारा बाहर अंदर सारिया नू कढ़दा रहा, एक एक नूं कह लगा निकलो मैं परमात्मा आ गया उन्हूं बिठाने। वो कह लगे ओ परमात्मा ते तेरा अज आया, असी तेरे कई जन्मा जन्मा दे साथी, इन्हूं नहीं छड़ सकते। परमात्मा ने आख्या चंगा तू इन्हूं बाहर कढ़, फिर समा होवेगा आवांगे, आके बैठांगे, तेरा थड़ा खाली नहीं। हुण जदों थड़ा खाली होया फिर आवांगे। इंतजार करके परमात्मा वापस चला गया। हजूर कहते ने हुण समा है, तौबा कर इन्हां गुनाहां तों, अते वाहगुरु दे अगे कर अरदास,

आओ भाई बंदी छोड़ नूं अरदास कीती सी ना पातशाह सी कैद होए पए मेर कर सानू इस कैद तो बंद खलासी कर अपना पल्ला पकड़ा गुरु पंचम पातशाह अरदास कर दें पंच दूर

बिन सिमरन भय कुकर काम। सिमरन तो बिना ही इंसान नहीं, काम ही कुत्ता है। आख्या कहने ने जून पोगरे, बिन सिमरन भय कुकर काम। साकत बेसवा पूत नना, बिन सिमरन गर्दब की न्याई। आ बिना सिमरन तो खोता बने खड़े।